0: ने किया है।
1: Times FM,
2: yeah. राधे श्याम राधे श्याम।
1: Times FM, yeah.
2: राधे श्याम राधे श्याम।
0: अरे राधा ये

0: चाय करें चाय दी चाय
1: नास्ताग्राम
2: ₹60 बिना लाइट बिना बिजली का मोबाइल चाहिए बोले भाई।